चंदन दास साहब की आवाज थी। वो ना होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी। इफ ही और शी वाज नॉट देयर, व्हाट वुड वी हैव लॉस्ट? ऑल वी वुड हैव लॉस्ट, दैट लाइफ वुड नॉट हैव बीन द सेम एनीमोर। शुक्रिया प्रोफेसर दौलत रामदास साहब, our ray of sunshine, no doubt. He is the man that is always the first on the line with us. Thank you so much, Professor Dawlat Ramdas. Yes, and of course, I see you're a fan of Chandan Das as well. Shukriya. And then there's Anil Ramsarup, another man from Benoni who knows his ghazals. This brother of ours knows his ghazals like you cannot believe. And saath hi saath hamari dadi maa Pakiza Nizami bhi is program ko samaat farma rahi hai. And then we have our sister Tarana all the way from Johannesburg, another lady that really loves her ghazals. And of course Katie of Pietermaritzburg. Aapka Suraj, also from Johannesburg, has tuned in. Shukriya to every one of you. And how can I leave my niece out? Yes, the young lady out there, and that is young Cass of Cape Town, who's really enjoying the music. Thank you so much, Cass. You really make our day by sending your beautiful messages. To Lizia program ko aage badhate, but before I really forget, it's time for our Suno or Siko segment of the program. This evening we'll do a few words, you know, that is used in poetry. Shiddat. Shiddat means intense. You know, you've heard this, you know, मैं आपको शिद्दत से चाहता हूँ, आई लव यू एंड आई लाइक यू विद अ पैशन. शिद्दत, शिद्दत मीन्स इंटेंस, इंटेंस पैशन. शबनम, यू हैव हर्ड दिस वर्ड एंड इट्स आल्सो अ गर्ल्स नेम. शबनम, शबनम मीन्स द मॉर्निंग ड्यू. यू नो द मॉर्निंग ड्यू दैट वी सी, दैट इज शबनम. दिलरुबा, दिलरुबा इज अ हार्ट स्टीलर, अ बिलव्ड कंपेनियन. अ पर्सन दैट स्टील्स योर हार्ट इज नोन एज दिलरुबा. चारागर, चारागर इज अ हीलर. मैं चारागर के पास गया था. आई वेंट टू द हीलर, आई वेंट टू द डॉक्टर. चारागर. फना, मैं फना हो गया आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में मैं फना हो चुका हूँ. आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन योर लव. फना. नायाब, नायाब मीन्स रेयर और प्रेशियस. यू नो यू हैव प्रेशियस स्टोन्स एंड यू से ए नो दिस इज रेयर, इट्स अ रेयर स्टोन, इट्स अ प्रेशियस स्टोन, एंड दैट इज नोन एज नायाब. मेहताब, मेहताब इज द मून. मेहताब और मून, यू नो, और द मून लाइट इज ऑल्सो नोन एज मेहताब. देर सो मेनी अदर, यू नो, नेम्स फॉर द मून, बट मेहताब इज एन उर्दू वर्ड, मेहताब. मुंतजर, मुंतजर, मैं आपका मुंतजर हूँ. आई एम ईगली अवेटिंग फॉर यू. मुंतजर मीन्स टू वेट फॉर समबडी, यू नो, एंड और समवन और समबडी. मुंतजर. लर्जिश, हाथों में जो लर्जिश है, हिलता हुआ सर है, मुझको तो बुढ़ापे में जवानी का असर है. हाथों में जो लर्जिश है, लर्जिश मीन्स टू शिवर और टू शेक. यू नो व्हेन योर हैंड्स, व्हेन योर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, लर्जिश, दैट हाथों में जो लर्जिश है, हिलता हुआ सर है, एंड योर सर एंड योर हेड इज शेकिंग. हाथों में जो लर्जिश है, हिलता हुआ सर है, हमको तो बुढ़ापे में जवानी का असर. फॉर मी इन माई ओल्ड एज आई एम स्टिल अ यंग मैन एट हार्ट. लर्जिश मीन्स टू शिवर और ट्रेम्बलिंग. तन्हाई, तन्हाई मीन्स लोनलीनेस. मैं तन्हाई में जिंदगी काट रहा हूँ. आई एम लिविंग माई लाइफ ऑल अलोन. खफा हो जाना, मुझे आपसे, मैं आपसे खफा हूँ. आई एम अनहैप्पी विद यू, आई एम अपसेट विद यू. खफा. आपने क्या खता की. खता, खता मीन्स अ मिस्टेक. आई हैव मेड अ मिस्टेक. व्हाट मिस्टेक डिड यू डू. आपने क्या खता की. आप खैरियत से हैं. हाउ आर यू, आर यू कीपिंग वेल. खैरियत मीन्स हाउ आर यू. लिहाज, लिहाज मीन्स टू रिस्पेक्ट. आप उनका लिहाज करो. यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट पर्सन. लिहाज मीन्स टू रिस्पेक्ट. मासूम, ये बच्चा बहुत मासूम है. This child is very, you know, innocent. Musawwir, वो मुसव्विर ने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई है. तस्वीर of course is an art or is a, you know, paint work. Musawwir is an artist, the man that made that paint or that painted that, you know, that beautiful structure. Musawwir. Masroof, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ. I am very busy. Masroof is to be busy. Makan of course, you know, is place. Nawazish,
aapki nawazish hai, every one of you that sends in such beautiful messages out there, Professor Daulat Ram Das, Anil Ramswarup, and of course Tarhana there, and not leaving Cass, and so many others that are always sending such beautiful messages. You know, I will tell you in Urdu, main nawazish hu, aapki nawazish hai. It is your kindness that you're saying, sending all these beautiful messages. To leave you, I think that should suffice for this evening. To aaiye program ko aage badhate hai, and we're going to listen to a must-day in the Ghazal world, and that is Osman Mir Sahab.

0: तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। उस्मान मीर साहब की बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस गजल को पेश की है, एंड ऑफ कोर्स द पीपल दैट आर एंजॉयिंग इट, एवरी वन ऑफ यू एंजॉयिंग इट, एंड मोर स्पेशली आपका सूरज, एंड वी गॉट ऑफ डीके मैगराज एंड हिज एंटायर फैमिली इन क्लिफडेल, मोहम्मद ऑफ रिजर्वर हिल्स, एंड माय सिस्टर बहन आयला। यस, आयला वाज अ चंदन दास फैन, बट शी इज ऑफ कोर्स शी इज लिसनिंग थ्रू। शमा बच्चू ऑफ पोर्ट चिप्स्टन, जाकिरा, यस जाकिरा ऑफ सेंट्रल जोहान्सबर्ग, एंड माय फ्रेंड आवर चाइना मैन, आवर इंटरनेशनल लिसनर फ्रॉम चाइना, इट्स in the morning, very early in the morning, and he's tuned into the program, he's got up from his sleep to listen to the program. Thank you so much, Riza Sahab, for tuning in, and then of course Vitesh Motilal and Rishi Kapoor as well. And I see my young niece, the Cass, is very concerned about my voice. She's picked it up. She listens to me so carefully that she's picked it up that I have a throat infection. Thank you so much for those ingredients that you have sent through.
1: Solve exciting riddles and unravel a web of suspense and adventure with Hollywood Bets and Spinners on Kim Mystery Parcel. You stand a chance to win a share of 1 million rand in cash and bonus bets. Start your quest and bet 2 rand or more on selected Playtech slots every Wednesday between 2:30 p.m. and 8:30 p.m. and Sunday from 4:30 p.m. to 10:30 p.m. What scintillating secret will your parcel reveal? Bet now. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
2: Get ready for Jayashree Ribas' Big Eastern Fashion Sale. Buy one, get one free on selected saris, Punjabis, lehengas, men's and kids' wear. Or get 20% off store-wide. Jayashree Ribas, Springfield only.
3: You are listening to Goldasta on Lotus FM.
0: जी हाँ, अभी भी महमूद के साथ है, यू आर विद एबी महमूद एंड इट्स आवर उर्दू लैंग्वेज शो गुलदस्ता। इट्स 24 मिनट्स पास 6 o'clock। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एंड वी गोना लिसन टू वन चुपके चुपके बाय अंडाउटेडली द जायंट ऑफ द गजल वर्ल्ड, और मेरा इशारा है गुलाम अली साहब की तरफ।

तुम इतनी हसी हो, तुम इतनी जवां हो, तुम्हें प्यार करने को जी चाहता है. एंड ऑफ कोर्स दैट वाज अशोक खोसला. अफसोस वक्त हमें इजाजत नहीं दे रही, अब अलविदा कहने का समय भी आ चुका है. रही जिंदगी तो फिर बातें होंगी, ना रही जिंदगी तो बस यादें होंगी. वैसे तो जिंदगी को संभाल के रखना जिंदगी मौत की अमानत है. डोंट फॉरगेट टू जॉइन शास्त्रा नगर सर इमीडिएटली आफ्टर द 7 PM न्यूज बुलेटिन. वी टॉक एट 7 एंड आई एम बी प्लेइंग ऑफ विद द गजल बाय नाजिया इकबाल एंड आई एम श्योर यू गोना लव दिस आर्टिस्ट एज वेल.